तालिबान हुकाम ने अफगानिस्तान में सिक्योरिटी बहाल करने का आज़म कर रखा है, लेकिन 2021 में उनके बरसरे इकतदार आने के बाद से हमले जारी हैं। दाश दहशतगर्द ग्रुप की इलाकाई शाख ने उनमें से कुछ हमलों की जिम्मेदारी कबूल की है, जिसमें वस्ती काबुल में एक चीनी रेस्तरां में होने वाला धमाका भी शामिल है, जिसमें जनवरी में कम अज़ कम 7 अफराद हलाक हो गए थे। दहशतगर्द ग्रुप ने दिसंबर 2024 में काबुल में होने वाले खुदकुश धमाके की जिम्मेदारी भी कबूल की थी, जिसमें मुहाजरीन के वजीर खलीलुर रहमान हक्कानी हलाक हुए थे। मकामी हुकाम के मुताबिक जापान में जलजिले से हलाक होने वालों की तादाद 30 तक पहुंच गई है, जबकि इमदादी टीमें एक ताकतवर जलजिले और गैस के मुबैना धमाके के बाद कोमामोतो में तबाह होने वाले एक शॉपिंग मॉल के मलबे तले दबे बच जाने वालों की तलाश जारी रखे हुए है। वज़ीर आज़म सानाए ताकाईची ने हलाकतों की नई तादाद की तस्दीक की है, क्योंकि हंगामी कारकुनों ने योन शॉपिंग मॉल में बचाव की कार्रवाइयां जारी रखी, जहां मंगल को आने वाले 7.1 शिद्दत के जलजिले के तकरीबन 50 मिनट बाद एक ज़ोरदार धमाका हुआ था। हुकाम ने बताया कि बचाव करने वालों ने अब तक मलबे से 10 अफराद को निकाला है, जिनमें 4 की मौत की तस्दीक हो चुकी है। एक शख्स में ज़िंदगी के कोई आसार नहीं है और 5 दीगर मामूली से शदीद ज़ख्मी हैं। जलजिले ने घरों को जमीन बोस कर दिया, पुलों को नुकसान पहुंचाया, आग भड़का दी और लाखों बाशिंदों को बिजली और पानी के बगैर छोड़ दिया, जबकि अवाखिर हफ्ता दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ने का भी इम्कान पाया जाता है। हुकाम ने जलजिले के फौरन बाद शॉपिंग मॉल को खाली करा लिया था, लेकिन हुकाम का मानना है कि जब गैस का मुबैना धमाका इमारत में हुआ तो कुछ मुलाजमीन अंदर ही मौजूद थे। इस आफत ने दूसरे मकामात पर भी लोगों की जानें ली हैं। हुकाम ने तस्दीक की है कि यात्सुशेरु शहर में निपोन पेपर इंडस्ट्रीज के कारखाने में चिमनी का एक हिस्सा गिरने से 5 कारकुन हलाक हो गए और 4 दीगर अब भी लापता हैं। आज सुबह तक तकरीबन 22,670 घराने और तनसीबात बिजली से महरूम रहीं, जबकि तकरीबन 84,000 घरों को पानी की फराहमी में खलल का सामना रहा। हुकाम ने नकासी के मराकज में एयर कंडीशनिंग यूनिट्स तकसीम किए हैं, जबकि मुतासर कम्यूनिटीज़ में ईंधन और पीने के पानी के लिए लंबी कतारें लग गई हैं। जंगमंदी की ताज़ा तरीन खिलाफ वर्जियों में से एक में गजा पर इसराइल के नए हमलों में 3 फलस्तीनी हलाक और 27 जख्मी हो गए। गजा शहर के मगरब में अलशती पनाह गुजीन कैंप में एक रिहायशी इमारत पर इसराइली फिजाई हमले में 7 अफराद जख्मी हुए। अलशिफा हस्पताल के तिब्बी हुकाम ने बताया कि जख्मियों को मुख्तलिफ दर्जे की चोटें आई हैं। रिहायशियों का कहना था कि उन्हें इसराइली खुफिया एजेंसी की जानब से इनखला की वार्निंग मौसूल हुई थी, इससे पहले कि 2 फिजाई हमलों ने कसीरुल मंजिला एक इमारत को निशाना बनाया था। इमारत मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई, जबकि करीबी घरों को भारी नुकसान पहुंचा, जहां शहरी दिफा की टीमों के इस पर काबू पाने से पहले ही आग लग गई थी।

0: ये खबरें सदाए तुर्किये की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं।
1: मकामी हुकाम के मुताबिक क्रेवी रिह में एक रूसी मिसाइल हमले में बच्चों समेत 6 अफराद हलाक और 8 दीगर जख्मी हो गए, जबकि रात भर कीव, लिवीव और वस्ती इलाकों पर होने वाली शदीद बमबारी के नतीजे में यूक्रेन भर में दर्जनों अफराद जख्मी भी हुए। मकामी हुकाम के मुताबिक क्रेवी रिह में रूसी मिसाइल हमले में बच्चों समेत 6 अफराद हलाक और 8 दीगर जख्मी हो गए। लिवीव के मेयर ने तस्दीक की है कि वहां रूसी फिजाई हमलों में 6 अफराद जख्मी हुए हैं। रूसी अफवाज की जानिब से गैर रिहायशी मकामात को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाए जाने के बाद दारुलहुकूमत कीव में भी मुतादद धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं। कीव के मेयर विताली क्लिचको ने कहा कि रूस बैलिस्टिक असलहे से दारुलहुकूमत पर हमला कर रहा है और उन्होंने शहरियों पर जोर दिया कि वो पनाहगाहों में चले जाएं। उन्होंने मजीद बताया कि कई गैर रिहायशी मकामात पर आग लग गई है। गुज़िश्ता रोज देर गए ज़ेलेंस्की ने खबरदार किया था कि रूस ने एक बड़े हमले की तैयारी कर रखी है। उन्हें कहा कि रूसियों ने चंद रोज कबल एक बड़े हमले की तैयारी की थी और इस बात का कवी इम्कान है कि यह हमला आज रात किया जाएगा। बराए मेहरबानी यूक्रेन के तमाम इलाकों में आज फिजाई हमले के इंतबाहात पर तवज्जो दें और महफूज रहें। ज़ेलेंस्की ने यूक्रेन के इत्तेहादियों से मुल्क के फिजाई दिफाई निज़ाम के लिए इजाफी मिसाइल फराहम करने की अपील की भी तजदीद की है। यूरोप भर में अपनी शिद्दत में इजाफा करने वाली गर्मी की लहरें और तेज हवाएं बर आजम भर में बड़े पैमाने पर जंगलाती आग का सबब बन रही हैं। यूनान के जजीरे क्रीट और पेलोपोनिस के इलाके में लगी आग बुझाने की कोशिश के दौरान 3 फायर फाइटर्स हलाक हो गए हैं। क्रीट में मुतादद देहातों और सयाहों को महफूज

सामिन, हमारी ज़िंदगी में कोई लम्हा ऐसा नहीं है जो बग़ैर हिसाब के गुजरे। ज़्यादातर जब हम माली मसाइल से नबर्दाजमा होते हैं और बाज़ अवक़ात रियाजी के मसाइल से दो चार होते हैं, तो हम जल्द से जल्द नतीजे तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे लम्हात भी आते हैं जब हमारा दिमाग उसके लिए काफ़ी नहीं होता। इन लम्हात में एक छोटा सा आला हमारे बचाव के लिए आता है, चाहे वो हमारे मोबाइल फ़ोन पर हो, हमारे कंप्यूटर में हो, या हमारी मेज़ के पहलू में। अगर जिस सदियों से उसके नाम में फ़र्क आया है, लेकिन हम इस आले को कैलकुलेटर कहते हैं, जो बुनियादी तौर पर रियाजी के चार बुनियादी काम अंजाम देता है: जमा, मनफी, ज़र्ब और तकसीम। सामिन, इंसानों के पास अब बहुत जदीद कंप्यूटर्स हैं जो फीस सेकंड में हज़ारों ऑपरेशंस कर सकते हैं। उन्हें या तो अपने दिमाग पर या छोटे पत्थरों, लाठियों पर और आखिरकार एक सादा कैलकुलेटर पर इन्हिसार करना पड़ता है, जिसे अबाकस कहते हैं। सदियों पहले जब पहली तहजीबें बनी थीं, उसके बाद 17वीं सदी के बाद से तेज़ी से आलमी तजारती लेन देन के साथ बढ़ती हुई तादाद ने सादा अबाकस के साइज से तजावुज़ करना शुरू कर दिया। अब ऐसे नए आलात की ज़रूरत थी जो 5 या 6 हिंसों के

इजाफे या ज़र्ब के अमल को अंजाम दे सकें और रियाजी दानों और मौजदों को इस मैदान में आने में देर नहीं लगी। सबसे पहले 17वीं सदी के अवायल में स्कॉटिश रियाजी दान जॉन नेपियर ने लोगार्थम का तरीक़ा तैयार किया, जिसने हिसाब किताब में बड़ी सहूलत फराहम की, और इस तरीके की बुनियाद पर उसने कैलकुलेशन टूल को नेपियर बोन्स कहा। उसी दौर में फ्रांसीसी साइंसदान ब्लेज पास्कल, जो बहुत कम उम्र में रियाजी में ज़बरदस्त शराकत करने की तैयारी कर रहे थे, एक बहुत ही आसान वजह से इसी सिमत में मुताला किया। ब्लेज पास्कल के वालिद एक टैक्स अहलकार थे और बढ़ती हुई तादाद ने उनके काम का बोझ दिन ब दिन बढ़ा दिया था। 3 साल की कोशिशों के बाद 19 साल नौजवान साइंसदान ने अपने वालिद के हिसाबात को आसान बनाने के लिए पास्कलाइन नामी मैकेनिकल कैलकुलेटर तैयार किया। ये आला, जिसकी 8 मिसालें आज मुख्तलिफ अजायब घरों में नुमाइश के लिए रखी गई हैं, ने 400 साल तक मैकेनिकल कैलकुलेशन और हत्ता के कंप्यूटर इंजीनियरिंग का भी आगाज़ किया, लेकिन यह तजारती लिहाज से कामयाब नहीं हो सका क्योंकि यह काफ़ी बड़ा और महंगा था। उसकी नई इजाद ने रियाजीदान ब्लेज पास्कल को 400 साल तक फादर ऑफ द कैलकुलेटर का खिताब दिया, लेकिन रियाजीदानों की तारीख पर किताब के जायजे के दौरान इत्तेफाक से ये इंकशाफ हुआ कि यह मालूमात मुकम्मल तौर पर दुरुस्त नहीं थी। उन्नीस सौ पचास की दिहाई में साइंसदानों ने मशहूर माहिर फलकियात कैपलर की एक किताब का जायजा लिया। किताब में एक मुख्तलिफ कैलकुलेटर की तस्वीर देखी। ये ड्राइंग फ्रांसीसी साइंसदान पास्कल से पहले की थी और उनका मूजिद जर्मन माहिर फलकियात और रियाजीदान विलहेम शिकार था। कैपलर की किताब में रिकोनिंग क्लॉक के नाम से इस मशीन का जायजा लेने वाले साइंसदानों ने इंकशाफ किया कि यह आला 6 हिंदसों तक के इजाफे और घटाव को दुरुस्त तरीके से अंजाम देता है और सारिफ को घंटी के साथ मुत्तला करता है, जो हिंसों के काफ़ी ना होने पर बचती है। तवील इल्मी बातचीत के बाद साइंसी दुनिया ने कैलकुलेटर की पहली दरियाफ्त का सेहरा शिकार्ड और पास्कल के दरमियान बांटना मुनासिब समझा। वक्त गुजरने के साथ साथ दोनों साइंसदानों के काम को मुख्तलिफ ममालिक में रियाजीदानों ने तैयार किया और आज के सुपर कंप्यूटर्स की बुनियादें रखी गईं। पहले पोर्टेबल और फिर इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर, ताहम जदीद कैलकुलेटर के मूजिद का उन्वान दो फ्रांसीसियों की सवानह हयात में दाखिल हुआ। आइंदा हफ्ते तक अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।